जे लोहा पारस नाल छुआ देइए तां ओ लोहा नहीं रहिंदा सोना बन जांदा। गुरु नानक दे चरण ऐसे पारस हन जे इस दे नाल लोहे नूं भी छुआ देइए तां लोहा भी पारस बन जांदा। सात संगत बोलो श्री पारस पेट पए से पारस।

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार पाई लेने दा भी, क्योंकि पता सी के आज जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे हुए, बिना परीक्षा लिते हुए आ किवें पता लगे के इस गद्दी ते बैठण दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह मगर मगर संगतां मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछां तकिया ते आखिया, साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ करां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करां। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन ओ चांदी ते डिग पए, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती, सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरां ढेर लग्या, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे चांदी ते नहीं फिसले और सोने दी मोरां वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड़ गए। सोने दिया मोरां चुक के करां नू चले गए। साहब जी फिर खोड़ा जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लैके चले जाओ करां नू, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात चोलियां विच पार के अपने अपने घरां नू चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे पाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए, सोने चांदियां दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही चोलियां भर के घरां नू मुड़ गए, तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो चोलियां भर के घरां नू चले गए हन इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा ता इक तू ही है, मेरा ता तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री, गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठा ले आए लैणे नू, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हा दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा ता इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नू खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासे दी खावा, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री, हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने भाई लैणे नूं कोल सदिया,
अपने हिरदे नाल ला के पाई लेने को अंग से लगा कर अंगद कर दिया। अंगद थापिया और आख्या लेनिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तां मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हैं।

छेवें पातशाह गुरु हर गोबिंद जी दे समय बीबी सुलखणी होई है। बहुतियां थावां ते विचारी गई लेकिन कितों पुत्र दी दात ना मिली। शिवालयां ते भी गई, जोगियां दे मठां विच भी गई, कबरां नूं भी जाके पूजिया, मणि मसाणां विच भी गई लेकिन कितों खरैत ना पई। ताईं किसे ने सुलखणी नूं सरोत पाई, सुलखणीए जे पुत्र चाहुंदी है तां गुरु नानक दे दर ते जा। इस वेले गुरु नानक दी छेवीं जोत मीरी पीरी दा मालक गुरु हर गोबिंद अकाल तख्त ते सुशोभित है। तू उन्हां दे चरणां विच जा के बेनती कर ते जो गुरु नानक दे दर ते जा के अरदास करदा है, मंग मंगदा है, ओ कदे फिर खाली नहीं लौटदा। साथ संगत बोलो श्री बीबी सुलखणी जदों मीरी पीरी दे मालक गुरु हर गोबिंद जी दे चरणां विच गई, जा बेनती कीती, सच्चे पातशाह तेरे चरणां विच अरदास है, मैं सारे द्वारे द्वारे डोल आई हां, कितों खरैत नहीं मिली, एक हुण तेरा दर रह गया और तेरे दर दी मैं स्रोत सुनी है, जो तेरे दर ते आउंदा ओ कदे खाली नहीं मुड़दा, मेरी भी चोली विच एक पुत्र दी दात पा दे, एक पुत्र बख्शो। मेरी पीरी दे मालक गुरु हर गोबिंद जी ने नेत्र बंद कीते और जदों अखां खोलियां ते आख्या, आ सुलखणीए तेरे भागां विच तां सत जन्मां तक पुत्र लिखिया ही कोई नहीं। सत संगत बोलो श्री। बड़ी उदास बेचारी वापस तुर पई, जा रही ते रस्ते विच भाई गुरदास जी मिल गए, अखां विच आंसू सुलखणी दे। भाई गुरदास जी कहन लगे, की गल है बीबी, आ गुरु नानक दे दर ते तां जेड़ा रोंदा होया आउंदा है ओ भी हसदा जाउंदा है, ते तू क्यों रो रही है? आख्या, एक दात पुत्र दी मंगण आई सां, लेकिन आज गुरु नानक दे दर तों भी जवाब हो गया। भाई गुरदास जी कहन लगे, साहब जी ने की आख्या है? आख्या, साहब जी क्यों देन तेरे भागां विच पुत्र है ही कोई नहीं। ता भाई गुरदास जी कहन लगे, ता तू बेनती करनी सी जे उत्थे भागां विच नहीं लिखिया ते हुण लिख देओ। सत संगत बोलो श्री। उत्थे भी लिखण वाला तू ही है और इत्थे भी देण वाला तू ही है। ता बीबी सुलखणी जुगत दसी भाई गुरदास ने। भाई गुरदास जी कहन लगे, जदों कल साहब जी साहब जी जाऊंगे ना बाहर घोड़े ते सवार होके, ता फिर तू रस्ते विच बेनती करी। आज बीबी सुलखणी रस्ते ते आके खड़ो गई, क्योंकि पता सी कि आज इस रस्तेओं मीरी पीरी दे मालक गुरु हर गोबिंद जी ने लंघना है। आके रस्ते ते खड़ो गई, जदों साहब जी आए घोड़े ते चढ़े ते बीबी सुलखणी ने चरण पकड़ लए, ओ गरीब निवाज कृपा करो, नाम मेरा सुलखणी, मैं वसदी हां चोबे, अर्ज करेनी हां गुरु हर गोबिंद अगे, अफल जांदी नू कोई फल लगे। सात संगत बोलो श्री। बेनती कर दी हां एक पुत्र दी दात। साहब जी कहन लगे, तेनू कल जो क्या सी तेरे भागां विच नहीं। आख्या, फिर गरीब निवाज, उत्थे भी भाग लिखण वाला तू ही है और इत्थे भी भाग बनाउण वाला तू ही है ना, जे उत्थे नहीं लिखिया ते हुण लिख दे। ऐसी जदों प्यार दी बेनती कीती, साहब जी बड़े प्रसन्न हो, आख्या, चंगा सुलखणीए तेनू पुत्र बख्शिया। बीबी सुलखणी हाथ जोड़ के कहन लगी, मेनू बहुतिया ने कहा तेरे घर पुत्र होएगा लेकिन अज तक होया कोई नहीं, हुण मेनू कहते इतबार नहीं, मेनू लिख के दे के जाओ। साहब जी कहन लगे, अच्छा फिर कागज कलम लिया लिख देइए। होर तां कुछ ना मिलिया सुलखणी नू, सामने एक ठीकरी पई सी घड़े दी,
ਉਹ ਠੀਕਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਇਸੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕਰੀ ਤੇ ਏਕਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਘੋੜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁੰਭ ਹਿਲਾਇਆ ਆਖਿਆ ਠਹਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠੀਕਰੀ ਤੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਏਕਾ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁੰਭ ਹਿਲਾਇਆ ਏਕੇ ਦਾ ਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਸੁਲੱਖਣੀਏ ਇੱਕ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਲੋੜ ਹੀ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਲੋੜ ਹੀ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਤੇ ਰਸਨਾ

ई पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण कीता। जिस शब्द अंदर सतगुरु गुरु नानक पातशाह सानू कलयुग जीवां नू उपदेश देंदे होए ये गल समझांदे ने, असी चंगे क्यों नहीं। कदी किसे मनुख ने अपने आप नू भी माड़ा आखिया, वो ते कहिंदा मेरे वर्गा चंगा है ही कोई नहीं, जिन्ना मैं सियाणा, जिन्ना मैं सुगड़, जिन्ना मैं गुणवान, जिन्ना मैं ज्ञानी, मेरे वर्गा कोई संसार विच नहीं। पर साहिब कहिंदे ने भाई चंगा किसे चंगयाई नाल हुंदा, शुभ गुणा दे नाल हुंदा है। अपने आप चंगे बन बहना उसनू चंगा नहीं आखते। इधर पट बाणी विच कहिंदे ने चंगे किवें हो सकने आ जे साडे अंदर मालक दी समझ मुताबक गुण होण। ते जे हे परमात्मा तेरे शुभ गुण साडे अंदर एक भी नहीं ते असी अपने आप नू चंगे किवें खवा सकने। पट तां ऐसा कहिंदे ने हम अवगुण भरे एक गुण नाई। हे मेरे पातशाह, मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें हो सकदा।

सब तो वड्डा अवगुण की है कि मैं अमृत नूं छड़ के बिख खाई जा रहा। हे परमात्मा, जो तू अमृत की दात दित्ती मैं वह भी हासिल नहीं की, केवल बिख चखी जा रहा। एदू वड्डा होर अवगुण केड़ा हो सकता है? फिर कहिंदे ने माया मोह परम पै भुले, माया दे मोह विच पै के परमा विच मैं भुलिया फिरदा हां। माया मोह परम पै भुले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। सुत कहिंदे ने पुत्र, दारा कहिंदे ने इस्त्री। हे मेरे मालक, मैं तेरे नालो प्रीत तोड़ के, तेरे नालो प्यार छड़ के, मैं अपना प्यार अपने पुत्र तियां नाल ते घर वालियां नाल लाया होया।

कंचन नारी में जियो लोबत है वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर ओ गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री, बस इन्हां विषय विकारां विच पै के मोह दे जंजाल विच फस के माया दे मिठे रस चख के हे परमात्मा सी तेनू भुलाया होया।

हे मेरे राम, ए साडे नीवे करम, मंदे पाग मैडे करम, तू सानू बख्श लै मेरे राम। ए नीच करम हर मेरे, इना कुकर्मा विच पै के असी अवगुण ते कठे कर रहे ने, साडे अंदर गुण कोई भी नहीं पैदा हो। मैं कई बार बेनती करिया करदा, आपा जद गुरु दरबार आईए ना, उदो कोशिश करिया करिए कि हाथ बन के बेनती करिया करिए, हे परमात्मा तू कर कृपा, मैं थे एक अवगुण छड़ जावा ते इथो एक गुण ले जावा। क्योंकि एक एक अवगुण छड़ी जावांगे, एक एक गुण ग्रहण करी जावांगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अवगुणा दा नाश हो जाएगा, गुणा दी प्रवृत्ति हो जाएगी। पर जे आपां कोशिश करिए ते तां ही ना। हुण तुसी देख लो, बच्चे नूं असी नर्सरी च बिठाने आ पहली क्लास विच, उस तो बाद अगे वो एक दो तीन करदा करदा किथे तक पहुंच जांदा है। बस इंज समझ लो कि अज असी नर्सरी च आए हां ते गुरु नानक दे स्कूल विच पढ़ना है, ते जिस वेले गुरु नानक पढ़ा रहे होण बैठे, उदो पढ़दिया कोशिश करिया करिए, मालिक एक सबक रोज दे दे, एक सबक रोज चाहिदा है। जे एक एक सबक करदे हां, असी उस गुणा नूं ग्रहण करना शुरू कर दिता, एक दिन गुण ही रहणगे, अवगुण नाश हो जाणगे। क्योंकि गुरु नानक दा दर ऐसा है, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। ए ते निर्गुणा नूं गुणवान बना दिंदे हन, ते इस दर ते आके भी असी अवगुण नहीं छड्डदे, ध्यान देना, अवगुण नहीं छड्डदे, बल्कि असी आउणा छड्ड दिंदे। कहिंदे ने एक व्यक्ति एक तीर्थ ते गया, ते तीर्थ ते बैठिया मुखी पंडित ने आखिया, हे भाई तेरे इत्थे बुजुर्ग भी आया करदे सन, तू भी आया, वो जदों भी आउंदे सन कोई ना कोई अवगुण छड़ जांदे सन, कोई ना कोई चीज छड़ जांदे सन, प्रण करके जाया करदे सन, ते तू भी कुछ प्रण कर जा, तू भी कुछ त्याग दे, तू भी कुछ छड़ दे। कहिंदा तुसी हुक्म करो की छड्डा। कहिंदे ने हुण पंडित जी ने कुछ वस्तुआं कुछ चीजां दे नां लै की छड़ सकता है। जिस वेले आज ओना ने ओ अवगणा दा ना लिया कि इन्हां विचों कुछ भी छड़ दे, ए व्यक्ति ए प्राणी कहिंदा पंडित जी, जिहड़ियां गल्लां तुसी छड़न लई कह रहे हो, मैं ए ते नहीं छड़ सकदा, हां ए हो सकदा है मैं इत्थे आउणा ही छड्डिया, मैं दोबारा नहीं आवांगा। ऐसे भी व्यक्ति हन, ओ अवगण नहीं त्यागदे, आउणा छड़ दिंदे ने। कई कई बार औखे हो जाते ने कि सच की गल सुनीए, क्यों कौन होंगे कोई सानू सच कहण वाला, आपां जिवें चल रहे हैं ठीक है, नहीं भाई, इस गुरु के दर ते आए हैं, आपां कोशिश करिए एक एक अवगुण त्यागण की, ते गुरु सानू गुण देवेगा। ते ऐसा नहीं ना करांगे, धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने, हर बिसरत तेरे गुण गलिया गल जाणगे। इसलिए साहब कहिंदे ने, मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे, ते गुणवंता मैं ते अवगुण हारा तेरे दर ते आया, हे मेरे मालिक तू गुणवान है, तेरे अंदर गुण हन, ते तू साडे ते कर कृपा।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर कृपा बख्श। तुसी करो कृपा साडे अवगुण बख्श के ते सानू अपने चरणा नाल ला लो। कर कृपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां। अगे

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल टंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनू अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं है।

कि तू परमात्मा नालों टुट ना जाए। मोह के बोलन बोली आपा कदी पूछ कीती है बोल केड़े ने, जिहड़े बोल सुन के परमात्मा साडे नाल प्यार करन लग पवे। इसलिए सतगुरु कहिंदे ने असी चंगे नहीं, क्योंकि कोई भी काम असी मालक दी मर्जी नाल नहीं करदे। असी जो कुछ करने अपनी मर्जी नाल ही करी जाने, जो साडे मन च आउंदा असी करी जा रहे हैं। कदी परमात्मा नूं असी नहीं पुछिया हे परमात्मा तेनू चंगा की लगता है, जिवें तू कवे मैं उवें बोलना, जिवें तू रखे मैं उवें रवां, जिवें तू चलावे मैं उवें चलना, जिवें तू आखे मैं उवें करां। फिर ते असीं कह सकने आ कि परमात्मा साडे ते मेहरबान है, पर जे परमात्मा दी गल ही नहीं मननी ते परमात्मा खुश किवें होवेगा। आओ आपां ख्याल कर रहे हां असीं चंगे क्यों नहीं, क्योंकि जिस वेले मनुख इस ख्याल ते पहुंच जांदा है उहनूं कुछ ना कुछ मिलदा है। जदों वो इस अवस्था ते होवे के मेरे नालों चंगा केड़ा हो सकदा, ते फिर भाई गल नहीं बनदी। मैनूं ख्याल चेते आया तुहाडी झोली पावां, कहिंदे ने एक दफा एक बजुर्ग एक नगर दे बाहर दी लंघ रहा सी, ते पिछों आवाज पई। आवाज मारन वाला एक नौजवान सी, उसने आवाज मार के आखिया ओ बाबा जरा रुक। बाबा जी रुक गए। जिस वेले वो बाबा जी रुक गए कोल आया ते बाबा जी ने बड़े प्यार नाल बोल के आखिया हां भाई दस तू मैनू रुकाया है, ते आवाज मारी है की कम है। कह लगा बाबा मैनू ए दस ए जिहड़ा नगर है एदे विच रहण वाले लोग किहो जाए ने, किहो जाए ने लोग। कहिंदा है एदे विच रहण वाले लोग किहो जाए ने, मैं तेनू ए दसा पहले तू दस जिथो तू आए उथो दे लोग किहो जाए सन, उथो दे लोग किहो जाए ने। कहन लगा जिथों मैं आया उथे बड़े माड़े लोग रहिंदे, बहुत माड़े, इसलिए मैं उह नगर छड़ के इस नगर विच आया, हुण दसो इथों दे लोग किहो जाए ने। बाबे ने जवाब दिता भाई वापस चला जा, इथों दे लोग उदू भी माड़े, उदू भी माड़े, वापस चला जा। साध संगत इसे तरह एक होर प्राणी आया, एक होर प्राणी ने आके आवाज मारी। हुण आवाज दे विच वेखो अंतर किन्ना है। आवाज मार दे आखिया बाबा जी मेरी गल सुन जा। जिस वेले ऐसी मिठी मधुर आवाज बाबे ने सुनी बाबा रुक गया। हां पुरशा दस किवें आया ते किवें बुलाया है। कहन लगा बाबा जी मैं एक गल तुहाडे कोल पुछना चाहना, मैनू तुसी दसोगे। कहन लगे हां जरूर दसांगा, पुछ की पुछना है। कहन लगा बाबा जी मैं ए पुछना चाहना इस नगर दे लोग कैसे ने, इस नगर दे लोग किहो जाए ने। हुण बाबा जी ने जवाब दिता, कहन लगे पुरखा पहले तू दस जिथो तू आए उथो दे लोग किहो जाए सन, जिहड़ा नगर तू छड़े है ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਭਲੇ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਰਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਬੜੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਿਆਈ ਚੰਗਿਆਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਰਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ

नगर विच आएगा ते साडे नगर विच भी सारिया ने इहो जिहा बनाएगा। तुहानू गुरु नानक दा वचन याद है, गुरु नानक पातशाह सियालकोट अंदर जदों गए ते गुरु नानक पातशाह दी बड़ी सेवा हुई, बड़ी सेवा हुई। साध संगत जिस वेले सेवा तो खुश होके गुरु नानक पातशाह जी ने आज उन्हां नूं की आखिया, कहन लगे उजड़ जा, उजड़ जा। ते साध संगत जदों बाबा जी अगे गए ते कई ऐसे लोग सन जिन्हां पत्थर भी मारे, पत्थर भी मारे, बुरा भला भी आखिया। सतगुरु गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई तुसी वस दे रहो, तुसी वस दे रहो। भाई साहब भाई मरदाना जी कह लगे बाबा जी मेनू एक गल तां दसो, जिन्ना तुहाडी सेवा कीती, तुहानू इतना मान सत्कार नाल पूजिया, उन्हां नू कहिंदे हो उजड़ जाओ, ते जेड़े पत्थर मारदे ने उन्हां नू कहिंदे हो वसदे रहो, ये रमज की होई? कह लगे भाई मरदाने आ तू ते कीर्तनी है, तेनू ते चंगी तरह पता है, फिर क्यों सवाल कीता ही? कहन लगे नहीं बाबा जी मैं तुहाडे मुंह सुनना चाहना, तुसी मैनूं दसो कि इहदे विच राज की है। कहन लगे भलिया पुरशा जिन्ना सेवा कीती उन्हां नूं आखिया उजड़ जाओ, इसलिए आखिया वह जिथे जाणगे उत्थे सेवा पंथी पैदा करनगे, उत्थे सेवा करन वाले अपने नाल लाणगे, ते जिथे जाणगे उत्थे सेवा दी आदत पाणगे, ते जिन्ना मारे ने पत्थर उन्हां नूं आखिया वसदे रहो, इसलिए आखिया ए जिथे जाणगे उत्थे अपने वर्गे बुरे पैदा करनगे, ए इत्थे ही वसदे चंगे, इत्थे ही रहण, ए बुरियाई इत्थे ही टक्की रहनी चाहीदी है। सो साध संगत कई बार ऐसा ही हुंदा है कि चंगा बुरा इंसान आप खुद है, जिहदे अंदर चंगियाई भरी है उहनूं सारे चंगे नजर आउणगे, ते जिहदे अंदर बुरियाई भरी है उहनूं सारे ही बुरे नजर आउणगे, उह कहेगा चंगा मैं ही हां बाकी सारे बुरे। गुरु नानक पातशाह ने बस इसे भरम नूं तां मिटाया।

हे माधो, माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे, सत्संग तो ध्यान देना। हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ, सतगुर कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

चंगे हम पापी तुम पाप खंडन। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं, क्योंकि असी पाप करने वाले हैं, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले हैं। किवें चंगे हो हे परमात्मा, चंगा ते फिर तू ही होया ना, निको ठाकर दे सामने नाल चंगा तू जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जाना। हम ऐसे तू ऐसा, आओगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे किते मन च बस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुर ख्याल देंदे हुए कह रहे ने

तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी। भगत कबीर जी कहते ने हे मेरे माधो असी कहो जाए ते आप कहो जाए, कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी तुम समसर नाही दयाल। समसर कहते ने तेरे वर्गा कोई दयालु नहीं है कृपालु नहीं है। मोहे समसर पापी ते मेरे वर्गा कोई पापी नहीं है। तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं मेरे वर्गा पापी कोई नहीं ते मेरे वर्गे अवगुण हारे दे ते अवगुण आप ही बख्श सकते हो।

मैं अवगुण हारा ते आप उपकारी हो, मैं अवगुण करी जाना आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी है, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

हे रमैया मैं तेरा बालक हां काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे कोल अवगुण बख्शा लैणे ने। इसलिए भाई आओ आपां उस मालक अगे इस तरह बेनती करिए

एक खिन लेना हर को नाम गोविंद, हम ऐसे अपराधी। कैसा अपराध है, रात पैंदी है सौ जाने हैं, दिन चढ़ दिया उठ के कमा कारण तुर पैने हैं, ते परमात्मा दा नाम कदो जपांगे। रात जो सोवे दिन करे काम, एक खिन लेना हर को नाम, एक खिन मात्र भी तू परमात्मा दा नाम नहीं जपदा, तेरे अंदर गुण केड़ा हो।

आंख सुनाए पूछे आला है विश्वास। अकृत कण दी तस्वीर की है, मद विच रिद्दा पाए के कुत्ते दा मास। कहिंदे ने कुत्ते दा मास, मद कहिंदे ने शराब विच रिने, तरिया मानस कोपरी मनुख दी कोपरी विच उसनू रिने। तिस मंदी वास रत्तू परिया कपड़ा लहू दा पड़िया, लाल रंग दा कपड़ा। इस नाल इसनू ढक के कहिंदे ने एक बीबी ले जा रही है, ताकल चली चूड़ी कल भोग बिलास। आख सुनाए पुछिया लाहे विश्वास, किसी ने जांदियां पुछ कर ली बीबी कुत्ते दा मास। शराब दे विच रिन्या मनुख दी कोपरी विच बनिया होया, इनू तू ढक के क्यों ले जा रही है, इनू किसे वेखना है। कहिंदे ने बीबी ने जवाब बड़े कमाल दा दिता, कहन लगी वीरा सुन, नदरी पवे अकिरत कन मत होए विनाश। मैं टक के वीरा इसलिए ले जा रही हां किते अकिरत कण दी नदर ना पै जाए। अकिरत कण दी नदर पै गई, ए भी भोजन व्यर्था चला जाएगा। सो अकिरत कण दी नदर भी इन्नी भैड़ी हुंदी है, कदी पत्थर ते भी पा देवे ना ओनू भी दुफाड़ करके रख देंदी है। मैं ते समझना अकिरत कण दी नदर तो भी बच के रहना चाहिए है। बचो अड विश्वास घातियां कोलों, अकिरत कणा कोलों, जेड़े किसे दा मनुख दा कीता नहीं जानदे उना मालक दा कीता की जानना। अरदास करिए, विश्वास घाती अकिरत कण मैं कोई ना रखंदा। पाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने

नाम तो बिना भाई तेरा किवें छुटकारा हो सकता है। ते नाम मिलता कितों है अख्या जपन वालियां दी संगत विच तेनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हां नू नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इस लई हजूर बख्शिश करदे हन कि ए गुरु दी शरण विचों मिल सकदा। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरै, नाम बिना कैसे पार उतरै। कुंभ बिना जल नाहे टिकावै, कुंभ कहिंदियां ने घड़े नू। आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकता, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसे तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

नदेड़ दी धरती हजूर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का दरबार। क्यों बई आज इस दरबार विच सोग क्यों छाया है? संगतां नीवी पा के बैठिया ने, अखां विचों हंजू केरी जांदियां ने। की गल, गुरु गोविंद सिंह महाराज की आख रहे ने? अज सानू शरीर करके सदा वास्ते बछोड़ा दे रहे ना महाराज, इंज ना करना। असी तुहाडे दर्शन कर करके जिउंदे हां, आ तको संगतां वल किवें हंझुआं दा मीह वरसा रहीआं ना महाराज, असी ये विछोड़ा सहार नहीं सकांगे। संगतां दा वैराग देख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करवाया। पंजा सिंघां नूं तैयार करके गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच खिलारिया। आप गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां प्रक्रमा कीतियां। पंज पैसे ते नारियल लै के गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे नमस्कार कीती। सिंघो, अज मैं तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ ला के चलिया। अज तो बाद देहधारी गुरु नहीं होएगा, बाणी गुरु गुरु है बाणी। आत्मा ग्रंथ विच शरीर पंथ विच जिन्हें मेरे शरीर करके दर्शन करने होण, मेरे खालसे का दर्शन करे। जिन्हें मेरे नाल वचन करने होण, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी प्यार नाल पढ़े। मेरा खालसा हमेशा गरीबां ते मजलूमां दी खातर जूझदा रहेगा। ये अपना धर्म भी बचाएगा, दूजिया का धर्म भी रखेगा। हमेशा ही गरीबां ते मजलूमां दी खातर जूझेगा, सरबत का भला करेगा। अज ये वचन आख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हुक्म कर दिता, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ। अब्दाली ने वार वार हिंदुस्तान पे हमला किया। हमला करता है, लुट मचा के चला जाता है, तबाही कर जाता है। तैनू कोई रोकण वाला नहीं? हां भाई, हुण तू हिंदुस्तान विच तबाही नहीं मचा सकता, क्योंकि सानू गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जदों गुरु दे लड़ लाया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का लड़ पकड़ाया ते समझाया सी। सरबत का भला करना है, दूजिया का धर्म बचाना है। आ एक दिन फिर चौथी वार अब्दाली ने हिंदुस्तान ते हमला किया है। आगरा ते मथुरा शहरां दे विच इहदे शिपाहियां ने लुट मचा दी। मंदरां विचों कीमती जेवर चुरा लए। किड्डा पापी है, भगवान दियां मूर्तियां तो भी मुक्त लाई जांदा। होर भी घोर पाप करदा है, घरां विच्चों कीमती समान भी लुट लिया ते नौजवान बहु बीबियां नूं भी बेटियां नूं भी पकड़ के गड्डियां विच बिठा के इहदे छपाई लै चले। सतसंगियो, बीबियां ने हाल दुआई मचाई है,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਵਧੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਵਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਜਾ ਮਾਰਕੰਡਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਬਈ ਆ ਗੱਡੇ ਤੇ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਗੱਡੇ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਮਚਾਈ, ਓਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਚਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਜ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਕੜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुल ही ते नारायण राख समय दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है अपने शीपा सलार नू हुकम दिता भई तू कश्मीर नू जा रहे जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उस नू भी सोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो तृतीय मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुनी समेत स्वाह हो गया एक शुकराने वजो हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हार

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए।

ताहर ने पल सब घाल गवास मेरे मन हर ऊपर की दे भरवासा जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी हर अपनी पैज रखे जनदासा जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै ता आगे अपनी बिरथा

सिकंदर को हर समान नहीं राजा ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सो एकत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ

सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उना ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा है वाहिगुरु तों।

ऐसे महापुरखां दे सिर्फ दर्शन ही कीतियां ओ पाप मुक जांदे हन खत्म हो जांदे नहीं।

मनुख भक्ति करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहंदे ने बड़ा सुखैन तरीका है, महापुरुषां दे चरणां दी पूजा कर, उन्हां दे चरणां ते सियाणपां छड़ के जदों अपना सिर रखेगा, बस बाबा जी कहंदे ने जवां दी मार तो तैनू छड़ा लैणगे। कबीर जी ने भी आख्या

ने खरना कबीरा तूरत केल के पुड़िया बांधी दे दिल सो चार को पेखना अंत खे पीछे सुनी दे डरावनी सुनी दे डरावनी जाजी विचों जाए पाए।

चले चलना हार बिचारा ले मनो चले चलना हार बिचारा ले मनो गंडेंदिया छे मार तोड़ेंदिया किखिनो जिमें

जीवतलो ब्योहार गए जको तो जानो जीवतला ब्योहार है जको तू जानो नानक हर गुण गाए ले सब सुख समान हर गुण गाओ मना सतगुरु सेव प्यार

डडा डेरा ई नहीं ज डेरा ते जाव, डडा डेरा ई नहीं ज डेरा ते जाव, ओ डेरा तक जो

पर पहाड़ी राजे इतने गुलाम हो चुके सन, इन्ने निताने हो चुके सन, इन्ने मन कमजोर हो गए सन के मुगल बादशाह दे अगे सिर नहीं सन चुक सकते। सगा औरंगजेब दे नाल मिल के गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल लड़ाई शुरू कर दी। उन्हां मूर्खां ने यह ना सोचिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साढ़े भले वास्ते लड़दे ने, सगा ये लोग गुरु साहिबां दे नाल लड़ाई छेड़ बैठे। लड़ाइयां ते पहला भी होईयां, हर लड़ाई विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जित हुई। आखिर औरंगजेब बादशाह ने दिल्ली तो फौज भेजी, कुछ पहाड़ी राजियां दी फौज

पता नहीं किन्ने देन, होर इस किले विच भुखिया रहना पवेगा। कृपा करो, अगर आपने किला खाली नहीं करना तो सानू आग्या दियो, असी अपने घरां नू जाइए। गुरु साहबा ने कहा, मैं ते पहला कहा सी कि जिन्हें मेरे को आना है, जिन्हें मेरी गली विच पैर पाना है, वो अपना सिर अपनी तली ते रख।

एक कागज लो, उस कागज ते ए लिख दियो, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं, बेशक चले जाओ। अज भाई मान सिंह ने अपनी जान नू प्यारी समझे, कागज लिया उते लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। 40 इन्ना दे साथी उन्ना भी लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। अज मुश्किल दी घड़ी आई, भाई मान सिंह अपने साथियों समेत मुश्किल दे समय गुरु नू छड़ के अपने घरां नू तुर पए, पर गुरु डोलिया नहीं, गुरु डरिया नहीं, क्योंकि गुरु सच ते खलोता है, सच वास्ते लड़दा है, अपने भले वास्ते नहीं, ओ ते दुनिया दे भले वास्ते इस दुनिया विच आया है।

निकले, गुरु नु ए बिदावा लिख के दे आए, तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं। अपने घरां नु तुर पए। जदों भाई मान सिंह अपने साथियां दे नाल अपने घरां नु पहुंचे, घरवालियां ने पुछिया, सुनाओ की हाल है गुरु साहब दा, आनंदपुर साहब दे किले दा की हाल है, की हाल है साहबजादियां दा, गुरु के परिवार दा, सिखां दा। तां भाई मान सिंह अपने परिवार नूं कहण लगे, असी ते गुरु नूं किले विच छड के आ गए, किले नूं घेरा पिया, लखां दी तादाद विच फौज है, असी गुरु नूं छड के आए हां, ते नाल ए वी लिख के दे आए हां, तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं। ए गल घरां वालियां ने सुनी, उन्हां दियां अखां गुस्से नाल लाल हो गईयां, उन्हां ने कहा ठीक है, अज गुरु नूं छड आए, अपनी जान नूं प्यारी समझ के, एक दिन ते मरना है, कदू तक जीवोगे, पतित होके जीवना, दुनिया दे डर तो सिख गवा के जीवना, को जीवना है, एक दिन ते मरना है, जे लड़दे मर जांदे, गुरु दे सामने शहीद हो जांदे, गुरु तू अपनियां जाना वार देंदे, ता असी शुकर करना सी, साडे पति तन ने जेड़े सेवा करदे मरे, अज तुसी सिखी गवा के आए हो, गुरु नू छड़ के आए हो, मौत तू बहुत डर लगदे, दुनिया दे सुख प्यारे लगदे, इस तरह करो, इस साड़ियां चुनियां ले लो, पग्गां ला दियो, अपनियां चूड़ियां ला के अगे रख दित्तियां, ए चूड़ियां पा लो, तुसी घरां विच बैठो, ए कमर कस्से खोल के सानू दियो, कमर कस्से करके असी जावांगियां, असी लड़ाई विच हिस्सा

खून ने फिर उबाला खादा के मना बड़ी भुल की थी। दुनिया दे सुख बदले गुरु नु छड़ दिता, सिखी छड़ दिती, पर जिदी कोई इज्जत नहीं ओदा भी को जीवना है।

माछीवाड़े आए, माछीवाड़े तो चले कई जगह होंदे साहब जी, जगह जगह ठहर दे लखी जंगल पहुंचे। संगता गुरु का जस गुरु के दर्शन करन वास्ते फिर आन लग पईयां, ओही रौनकां फिर लग गईयां। पुत्रां दे शहीद होण दा कोई गम नहीं, जदों गुरु साहिबां दे धर्म सुपत्नी माता सुंदरी जी ने पुछिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, महाराज मेरे चारों साहबजादे किथे ने? ता गुरु साहिबां ने कहा सी तुहाडे चार पुत्र उन्हां सारिआं तों वार दित्ते ने जिहड़े जिउंदे ने जिन्हां हाली जिउणा है। तुहाडे साहबजादिआं ने सिखी दा महल होर पक्का कर दित्ता है अपना खून दे के। समा बीतिया, गुरु साहिब जी हुण कोट कपूरे पहुंचे। साहिबां नूं पता लगा सरहिंद दा नवाब वजीर खान 5000 फौज लै के पिछा करदा आ रहा है। तां गुरु साहिबां ने कपूरे नूं कहा, कपूरिया साढ़े पिछे वजीर खान 5000 दे करीब फौज लैके आ रहा है, तू अपना किला दे तां कि इत्थे असी उहदे नाल दो हथ कर लईए। कपूरा अखवांदा गुरु दा सिख है, पर औखा समा देखिया तां इह वी मूंह फेर गया। कहन लगा, महाराज मुगलां दा राज है, मैनू मुगलां कोलों डर लगदा है, जे तुहानू किला दिता ते मुगल मैनू खत्म कर देने, वजीर मैनू खत्म कर देवेगा, बादशाह मैनू सजा देवेगा। ता गुरु साहिबां ने कहा जिन्हां दे मन विच डर है उन्हां दी सानू लोड़ नहीं। अज भी इहो जे लोक आए ने जिहड़े दुनिया दे सुख बदले पतत हुंदे ने, सिखी छड्डदे ने, अमृत तो दूर ने।

जीवे पतल थी जाए सब हराम, जेता किछ खाए इज्जत नहीं, ते जड़ा जीवंदा है समझोदा खाना पीना सब हराम है।

कपूरे दे कोलों किला मंगया। कपूरे ने किया महाराज मैनू मुगलां तो डर लगता है, बादशाह को डर लगता है, अगर मैं आपको किला दिता ते मुगलां ने बादशाह ने मैनू खत्म कर देना। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया कपूरिया भय वाले मना दी सानू लोड़ नहीं, इस तरह कर सानू कोई अपना आदमी दे जेड़ा इस इलाके दी सानू जानकारी देवे। लिखे के कपूरे ने अमृत भी छकिया पर गुरु साहब जी हुण इत्थे रहे नहीं। कपूरे ने अपने आदमियों नूं कहा गुरु साहिबां नूं इस इलाके की जानकारी दिओ, अगर वजीर खान दे नाल किधरे लड़ाई हो पवे तां तुसां विच हिस्सा नहीं लैणा।

म्यान विचू कृपान खिची जकारा छड़ेया लकीर मारी लकीर टप्पी देवंगार केके आई मैनू आज गुरु दे हुकम दा पता लग गया। मैं आज ए फैसला कर ले है, हम तो गुरहित

वजीर खान दे जरनैलां सरदारां नूं लगदे ने ते उहनूं बड़ा भारी नुकसान हो रहा। आखिर लड़दिआं लड़दिआं 13 सिंह बाकी रह गए। इन्हां 13 सिंघां ने हुण बंदूकां छड़ दित्तियां, किरपानां कढ़ियां, हत्थां विच ढालां फड़ियां, जकारे छड़ दे बेरियां दे उल्लों निकले ते दुश्मन दे उत्ते बिजली दी तरह टुट के पै गए। उन्हां सिंघां दा किरपाना सूत के दुश्मन ते टुट के पैना गुरु साहिबां ने

दियो ओज ऐसो हजारन जैसो महा को पठाने गज कीट माने बड़े उत्साहे रणन शत्र गाहे उछलने छलंगी गुरु के पुचंगी के मेरे पुचंगी मेरे पुत्र छाला मार मार के बड़े उत्साह दे नाल लड़ाई दे मैदान विच नितरे कल्ला कल्ला हजारां ते भारू पिया महा को पठाने गज कीट माने बड़े क्रोध दे विच दुश्मन ते टुट के पए हाथियां नू भी कीड़ियां दे समान समझदे ने बड़े उत्साह बड़े उत्साह विच लड़दे ने रणन छत्र गाहे रणन कहंदे ने लड़ाई दा मैदान लड़ाई दे मैदान विच शत्रुआं नू अपने पैरां थले लताड़िया चले वीर सोउ बड़े उत्साहे परे शस्त्र मारे महा जंग माहे कड़े म्यान तेग गहे अथ ढाले चलाकी करन ते सो छाले उछाले म्यान विचू तेग कड़ी हथां विच ढाल फड़ी बड़ी चलाकी दे नाल छाला मार दे वार बचांदे वार कर दे ए सिंह दुश्मन दे नाल लड़दे पए साहब जी ने बड़ी सूर वीरता दा नजारा अपनी कलम नाल आप लिखिया कड़े म्यान तेग गहे अथ ढाले चलाकी करन ते सुछाले उछाले आखीर चटापट जुटे लटा लट होए सटापट सुटे कटा कट जोए कटा कुट कटे चटापट मारे खटा खट खोटे हटा हट हारे अखीर लड़दे मरदे ए सिंह भी शहीद हो गए। वजीर खान जद देखेया उसने कि ना कोई तीर चल रहे है ना कोई गोली चल रही है इसने फतेह दा डंका बजाया वापस मुड़ गया हुण भाई मां सिंह मुदड़े मुंह पे है सैंक दा पे है सा टुटदे ने हुण भाई मां सिंह अरदास पिया कर

जिथे कदी मौत नहीं, जिथे हमेशा जीवन है, जेड़ा अज तू उपकार कीता है, अपनी जान दे के एदा फल कदी भी खत्म नहीं होगा। भाई मां सिंह पूरा हो गया, आपां कई बार कह देने कोई मरे कि फलाना पूरा हो गया, नहीं, जिन्हें अमृत नहीं छकिया, गुरसिख परिवार विच जन्म लिया, सिखी विच पूरा नहीं, ना बाणी नाल जुड़िया, ना गुरु नाल जुड़िया, ना अमृत नाल जुड़िया, वो किवें पूरा हो सकता है। पूरा तो होया है भाई मां सिंह जिदा कोई जीवन नहीं चंगा, जिन्हें दुनिया का भला नहीं किया, जिन्हें ठगियां कीतियां, दुनिया नू धोखे दिते, अपने भले वास्ते लोकां नू दुख दिंदा है, वो जदों मरदा है वो कदी पूरा नहीं हुंदा। पूरा वो है जिहड़ा सच्चा जीवन जिउंदा है, जिन्नू रब मिले वो पूरा है, परमेश्वर पूरा है, ते उहदे प्यारे पूरे ने, वो पूरा कदी नहीं होया जिदा जीवन उच्चा है। किन्नी कृपा होई भाई मां सिंह, एक ओदा मरना जिहड़ा गुरु तू बेमुख होके मरदा है, इत्थे भी फिटकारा, दरगाह विच भी फिटकारा, एक मरना भाई मां सिंह दा, उन्हां दे साथियां दा, जिन्हां दा संस्कार धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आप कीता, उस जगह ते नाले वर दिता, इस जगह दा नाम हुण मुक्त सर होवेगा, जिहड़ा इत्थे आएगा प्यार शरदा नाल वो मुक्ति नू प्राप्त होवेगा, वो जो मंगेगा उसनू प्राप्त होवेगा। अज जदों भी कोई मुक्त सर जांदा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी नू मत्था टेकदा है, वो इन्हां शहीदां नू भी मत्था टेकदा है जिन्हां ने सेवा बदले, जाना वारियां जाना दे नाल प्यार नहीं कीता, गुरु नू सच्चा उच्चा समझ के सेवा कीती, ते सानू राह दस्या है। भाई जिहड़ा सिखी गवा के पत धो के जिउंदा है, ओदा जिउणा कोई जिउणा नहीं, कोई भी है किसे भी धर्म दा, किसे भी मजहब दा, जे अपने धर्म च पक्का नहीं, अगर ओदे अमल चंगे नहीं, ते ओदा जिउणा कोई जिउणा नहीं। भाई मां सिंह ने जो किया करके दिखाया कि असां तां गुरु वास्ते प्राण देने नहीं, और प्राण दिते भी। आओ भाई अरदास करिए, सच्चे पिता एहो जिहा जज्बा, एहो जिहा उत्साह सानू भी दे, तां कि तेरे राह ते चलदे होए, सच ते चलदे होए, दुनिया दे भले वास्ते जीवीए, जो तेरा मिशन है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला, अमृत छकिए बाणी नाल जुड़िए, तेरे नाल जुड़िए, धर्म वास्ते लड़िए, अते अपना जीवन सफल करिए।

ऐसे महाबली महायोधे सर्वांश दानी अमृत के दाते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हें इस दुनिया में आके एक नवा काम किया, जिन्हें दुनिया ने नीच किया छोटे समझिया उन्हें अमृत छका के अपने वर्गे बना लिया। अगर कोई चमार अगर कोई चूड़ा भी अमृत छक लवे रहत बैत विच रवे गुरु दे उपदेश ते चले ते गुरु साहब जी कहंदे ने ओ फिर चूड़ा नहीं ओ खालसा है ते खालसा मेरा रूप है। ए है गुरु साहबां दा मिशन सरबत नाल भला करना अणख नाल जीवना धर्म दी रखिया करनी जुलम के सिर नहीं चुकाना सरबत दा भला मंगना।

पता नहीं किन्ना कु सियाना है, किन्ना कु सुगड़ है। कोई हिसाब ला सकता है क्योंकि उसकी किरत का ही हिसाब नहीं लाया जाता। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन समार। तेरी दिती हुई दात की समझ नहीं आती, तेरी समझ कितों आ। तेरी दात का ही मुल नहीं पाया जाता, तेरा कौन मुल पा। तेरी दात ही एडी सोहनी एडी खूबसूरत एडी जुगत वाली है, तू कि सियाना होगा। साहब कहते मत समझी वो सियाना कोई होर भी है जिसने तेन शरीर दिता है, जिसने शरीर च मन पाया, जिसने तेन वर्तन वास्ते धन दिता है, जिस दिया सारिया बख्शिशा भोगदा है ओदे नालो सियाणा होर तेनू कोई मिलेगा नहीं। ते कई बार तां इन्ना भी भुलेखा लग जांदा है, तू ऐसा समझण लग पैंदा उहने कोई गलती कीती है मैं ठीक कर दिया। जो उहने बनाया शायद गलत बनाया, मैं उहनू ठीक कर देवां। जो उहने रचिया शायद गलत रचिया, मैं उहदे च सुधार कर देवां। अपने आप नूं ओहदे नालो सियाणा समझ बैठा होवांगा। कोई सूरत नहीं, कोई तरीका नहीं कि तू अपने आप नूं ओहदे नालो सियाणा समझ सके। जिसने तन मन धन जिन प्रभ दिया, जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनन खान। एक शब्द च महाराज सच्चे पातशाह ने सानू चेता कराया, चेता ही कराने वाली गल है। पता सारा है भुल जाने साहिबा ने पावन बाणी च सानू उन्हां चीजां दी सारी लिस्ट तां नहीं आउंदी, लेकिन मोटिया मोटिया जिन्हां बिना बंदे का नहीं सरदा उन्हां दा जिक्र महाराज ने किया। तो कहते हैं तेनों चेता है, तेनों ख्याल है, जिसने तेन इना कुछ दिता है।

महाराज इंद्रसेन भी बैठे, और प्रेमी भी बैठे। महाराज सुदरसेन ने आके धन गुरु नानक दे चरणा ते मथा टेकिया ते एक प्लेटी वे प्लेट विच रकेबी विच एक रकाबी विच कुछ हीरे जवाहरात महाराज जी अगे रख दिते। धन गुरु नानक कहन लगे सुदरसेन ने कि महाराज तुहाडे चरण परसन आया, कुछ भेटा तां करना चाहीदा सी। कादे लई कि महाराज तुहाडे दर तों नाम दी जाचना करन आया, भगती दी भुख वाला बंदा, कुछ अर्पण करा तां ही है ना, खाली हथ किवें तुहाडे नाल सांझ पावां। साहब कहन लगे फिर सुदरसेन जे तू रखण ही लगा सै कोई अपनी वस्तु रखदा कि महाराज मैं अपने खजाने चो लेके आया। तेरे खजाने कित्थों आ गए कि महाराज बादशाहत अपनी बाप दादे पड़दादे दी, अपनी राज अपना राज है, अपनी हुकूमत है, अपने खजाने चो तन लेके आया। साहब कहन लगे ए कित्थों आया राज कि महाराज कई पुश्तां तो अपना ही है। सुदरसेन जेड़े तेरे वड्डे वडेरे सन ओह भी कहिंदे सन राज मेरा है, ओहदे अगले भी कहिंदे सन राज मेरा, खजाना मेरा है, उसदे अगले भी, तेरा पड़दादा भी, तेरा दादा भी, हुण तू भी कहिंदा राज मेरा खजाना मेरा है। जद तू नहीं रहेगा फिर इह किहदा होवेगा कि महाराज राजकुमार दा ओह राजा होवेगा। साहब कहन लगे तैनूं भरोसा है ओह रहेगा राज रहेगा, तैनूं पक्का भरोसा है? घबरा गया, कहन लगा महाराज कुछ नहीं कह सकदा। साहब कहन लगे जो पिछे तुरिया आ रहा हर कोई कहिंदा रहा सी मेरा है, हुण तू कहिंदा मेरा है, जे सुखी सांधी राजी रहे राजकुमार ते ओह कहेगा मेरा है, इन्हां सारिआं चों है किहदा फैसला करेगा? सोचिया सोच के घबरा गया, कहन लगा महाराज किसे दा भी नहीं, सब छड के तुरे गए ने, मैं भी छड़ के तुर जाना, कोई खो भी सकदा सी मेरा नहीं। साहब कहन लगे इसे करके तकिया कुछ अपना अर्पण करें ते गल बन दी। कहन लगा सतगुरु ए शरीर हाजर है। साहब कहन लगे शरीर तेरा अपना है कि महाराज मेरा इसे शरीर का ना ही सुदरसेन है, मेरा ही शरीर है। साहब कहन लगे इनू भुख लगती है तेनू पुछ के लगती, इनू नींद आउंदी है तेनू पुछ के आउंदी है, इनू दुख आउंदा है तेनू पुछ के आउंदा है, भला कोई चाहुंदा है कि मेरे शरीर नूं दुख आवे, इनू कोई तकलीफ आउंदी है कि नहीं, महाराज अपने आप ही मेरी मर्जी तो बाहर ही सारा कुछ हो जाता है। जिसले मैं नहीं खाना चाहुंदा उसले भुख लगी हुंदी, जिसले मेरा खाण नूं चित करदा उसले शरीर इजाजत नहीं देंदा। साहब कहन लगे फिर तेरा किवें होया कि महाराज मेरी मर्जी नाल चलदा तां कोई नहीं। साहब कहन लगे इसे करके क्या कुछ अपना दे। कहन लगा महाराज वाकई ठीक है, शरीर मेरा अपना नहीं, ना मैं आप बनाया ना मेरी मर्जी चलदा है, महाराज मेरा मन हाजिर है। साहब कहन लगे मन तेरा है? कहन लगे महाराज मन तां फिर मेरा ही है। साहब कहन लगे सोच के दस जद तू इत्थे बैठा है मन इत्थे ही सी कि नहीं महाराज कई थाई फिर आया? साहब कहन लगे इंज कर फिर दो पल इस नूं रोक के रखी, जे तां इत्थे ही रहे ते तू अर्पण कर दे, जे ना रोके ते फिर तेरा कादा होए। अखां मीटियां मन नूं रोकण दा जतन कीता, सच जानना जिवें जिवें नूं रोकण दा जतन करिए ना तां साहब कहिंदे ने मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए, ਇਹ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕੂਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਂ ਹੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ, ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਮਨ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਧਨ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਰਾਜ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ। ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨਮਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਨਮਤ ਮਿਟਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਮੰਤਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਓਏ ਜੋ ਬੀਚ ਹਮ ਤੁਮ ਕਛ ਹੋਤੇ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਲਾਨੀ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਓਏ ਜੋ ਬੀਚ ਹਮ ਤੁਮ ਕਛ ਹੋਤੇ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਲਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਵਖਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਹੈ,
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਗੋਖੜੂ।

चेली कुछ नहीं कहिंदा, ओ कंजने सोना है। जे गाल दई ते फिर ओनू की कहांगे, मिट गए गहने मिट गए, सिर्फ सोना रह गया। साहब कहने जिस वेले मैं अपना आपा मिटा दिता, मैं मेरी मिटा दिती, फिर तेरे नाल मैं इस तरह रल गया। कनक जिस तरह सोने ते गहने दा कोई फर्क नहीं, जिस तरह पानी ते पानी दे बुलबुले च कोई फर्क नहीं। तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग जैसा, कोई फर्क ही ना रह गया, मिट गया मैं तेरे विच रल गया। ते हुण ओ कुछ प्राप्त होया है, प्रगट्यो सहज प्रगट्यो जोत सहज सुख सोभा, बाजे आनत बाणी जीवन संगीत नाल भर गया, गुजे संगीत नाल भर गया, अंदर सहज आ गया है, बाहर शोभा बन गई। प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बाणी, कहो नानक नेचल घर बांधियो, गुर दी गुर कीओ बंधानी। गुरु ने ऐसा घर बन दिता है जिहड़ा कदे डिगण डोलण वाला नहीं, कदे टहण वाला नहीं। ऐसे घर दा वासी मैनू बना दिता है, ऐसी अवस्था च पहुंचा दिता है। पर पहुंचिया कदों, जद मैं यह समझ लिया

0: उसे सियाने प्रभु ने सुजान प्रभु ने मेरे मन दी वेदना नु मेरे दुख सुख नु सुने है ते ता मनु बहुत लाहे वंदे फल पदा प्राप्त होए तो बिद नीकी चंगी बिद नाल चंगे ढंग नाल मेनू लाभ प्राप्त होए ऐसे करके मैं हाथ बने ने ओदे अगे जी की एक ही पैमानी अवर जतन कर रहे बहुतेरे तिन तिलनी कीमत जानी प्रभु तो बेमुख होके जिन्ने मर्जी जतन कर लिये होमे दे परे होए पदार्था नाल बजे होए जिन्ना मर्जी भज नठ कर लई ओदी कौड़ी कीमत नहीं ओदी तिल भर दी कीमत नहीं। हां जिस दिन गुरु के हो जाइए जिस दिन ए एहसास हो जावे जिसका दिया पहने खाए तिस्यों आलस क्यों बने माए साहिबां दी सुखमणी रोज पढ़दे सुनदे जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे ध्याए सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस तर रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याईए ध्यावन जोग। कितना कुछ उसने बख्शिया है किन्ना कुछ प्या मानना है ओदे सामने सियाणा बनके ना बहो निमाणा बनके ओदे सामने होशियार बनके ना बहो ओदे सामने ता चाकर बन जा सेवक बन जा भोला बन जा ते जिस दिन भोला बन जाएगा पायो बाल बुद्ध सुखरे स्वाद आ जाएगा ओदियां बख्शां दा पात्र बन जाएगा। ए भावना लेके हम किछ नाही एक है ओही आगे पाछे एको सोई ऐसी भावना लेके ते जिस दिन ए भावना लेके तुरेगा फिर गुर बोयत वड भागी मिलिया नानक दास संग पाथर तरिया तर जाएगा तरन वाले होना है ते फिर मालिक दे अगे इस भावना नाल चुकिया करिए।
1: तिन ही सुनिया दुख सुख में
0: इस भावना नाल चुकिया

असली गुरु नानक प्रगटिया, सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंद जग चानन हुआ। पर उन्हां लोकां वास्ते जिन्होंने गुरु नानक नूं सुनिया ते वेखिया, जिन्होंने गुरु नानक नूं समझिया, उन्हां दे हिरदे चों अज्ञान दी धुंद मिटी है, मिटेगी जरूर। भाई साहब भाई गुरुदास जी इसे पौड़ी च इक सोहनी तुक कहिंदे, कहिंदे ने सिंह बुके मिरगावली भन्नी जाए ना तीर तरवा। कहिंदे ने जिसले शेर गजदा है ना, ते मिरगावली नूं चौपायां नूं भाजणा पै जांदियां ने, शेर दी गर्जना सुन के वेखिया नहीं हुंदा, अजे अजे शेर सामने नहीं आया, शेर गजदा ही है। ते हिरना दियां डारां नूं होर छोटे मोटे जानवरां नूं गिदड़ां बाघां नूं भाजणा पै जांदियां ने, शेर दी गर्ज सुन के, गुरु नानक दी गर्ज सुन के पापां ते पापियां नूं भाजणा पै जांदा, गुरु नानक दे शब्द की गर्ज नूं सुन के विकारां नूं भाजणा पै जांदियां ने, विकारियां नूं भाजणा पै जांदियां, टिक नहीं सकदे। गुरु नानक दे ज्ञान नूं प्राप्त करके अज्ञान नूं भाजणा पै जांदियां। जिस दे हिरदे च गुरु नानक गजदा है, जो गुरु नानक दे बचनां नूं हिरदे च थां दिंदा है, उहदे जीवन विचों विकार बुराइयां पाप अपने आप नठदे चले जांदे, मनुख शुद्ध हो जांदा, पवित्र हो जांदा। समझना ओदे घर विच, हिरदे घर च गुरु नानक आ बैठा है, ओदे घर च आनंद आ बैठा है, ओदे घर च सहज आ वसिया है, निरंकार ही आ वसिया है, रोम रोम कोट ब्रह्मांड को जिव निवास चास, ओ वाहिगुरू आप ही हिरदे च आ वसिया उस मनुख दे जिदे हिरदे च गुरु नानक दा शब्द वस गया। जिस दिन शरीर रूप करके दर्शन बख्शे सन, दाई ने दर्शन किते चक्रित रह गई, कहन लगी मेरे हत्थां विच बड़े बाल जम्मे, पर एक ऐसा अलौकिक बाल है जिहड़ा जमदे आ, बाकी तां रोंदे ने, मुस्कुराउंदा ते हसदा जन्मे, उहनूं पता नहीं ना कौन जन्मे। पंडित हरदयाल आए, मैता कल्याण राय नूं वधाई दित्ती, अपना हिसाब लाया ज्योतिष दा, ओह ग्रह नक्षत्रां दी चाल वेख के अपने उस ज्योतिष विद्या दे हिसाब नाल उसने वेख्या, जाने दर्शन कीते ने बार स्वरूप दे, ते बार मेहता जी नूं आके वधाई देंदा है, मेहता इस बाल दी तेरे घर च जन्मे इस पुत्र दी जिहदी तैनूं बड़ी सिक सी, इस बाल दी तैनूं बहुत बहुत वधाई होवे। ते कहिंदिआं कहिंदिआं उहदे नेत्रां च जल आ गया, मेहता कल्याण राय दा मूंह होर तरह दा हो गया, चेहरा होर तरह दा हो गया, मेरे बाल दी वधाई दे रहा है ते नेत्रां च पानी क्यों आ गया, इस नूं बदशक नहीं समझिया। कहिंदे ने परोत जी ये की करदे हो, वधाई भी देंदे हो ते नेत्र भी सज्जल हो गए। ते पंडित जी कहिंदे ने, पंडित जी कहिंदे ने मेहता जी होर किसे गल दा वैराग नहीं, वैराग इस गल दा है, इस बालक ने जिसने तेरे घर च जन्म लिया है, इस महापुरुष ने पता नहीं संसार ते की कुछ प्रचारना है, की कुछ विखाउना, की कुछ सुनाउना है, बड़ा अलौकिक पुरख आया है, पता नहीं की कुछ वखे वेखेगा, मेरी उम्र इजाजत नहीं देंदी कि मैं वो सारा कुछ अपनी अखां नाल देख सकांगा, वैराग मैनूं इस गल दा आ गया कि जिस महापुरुष दे जन्म ते अज मैनूं तू बुला भेजिया है कि इहदी मैं पत्री वाचा, इहदी मैं जन्म पत्री लिखा, इहदे मैं नक्षत्र वेखा, वह मैं तेरे हुक्म विच कर दिता, लेकिन मेरे भागा च यह नहीं कि जो कुछ यह संसार दे उत्ते पसारेगा वह वेख सका, मेरी उम्र आग्या नहीं देवेगी कि मैं उस समय तक वेख सका कि संसार नूं केड़े केड़े प्यारे प्यारे सुनेह दिंदा है, कैसे कौतक विखाउंदा है, की कुछ वरताउंदा है, वह मैं ना वेख सकांगा, मैं तो उस करके वैराग विच आ गया। जन्म ते जिन्हां ने दर्शन किए उन्होंने समझे है कि पता नहीं की करेगा, ते ही नहीं छोटे छोटे हुंदे आ कितने ही कौतक वरताए, किते लेटिया होया उते सर्प पै छाया कर दे, किते माल डंगरां ने जे खेती चर लई है ते उह खेती मुड़ के हरी पई हुंदी, किते बालां नूं नाल लै के उहनां नूं सतनाम ते वाहिगुरू दा जाप पै कराउंदे ने, एक ओंकार पै दड़ाउंदे ने, किते उह पिता जी दे दित्ते होए 20 रुपईए साधां नूं खवा के सच्चे सौदे पै करदे ने, जिहदियां बरकतां अज वी पै खाने आ असीं। गुरु नानक दे उस महादान नूं, उस महापुन नूं अज लंगर दा नां दिंदे, पता नहीं उसे दी बरकत सदका ही असन बसन गुरस

तो तुम ते लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता,

जन को सब अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सा मतलब परवान चरण शरण हम अनाथ नाथ करनी अपनी कृपा करे चल कमल नानक आला दे किस दिन आम के पर परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी।

साजन संत मिल नाम जपेहा, शीतल सांत सहज सुख पाया। आठ शीतल सांत सहज सुख पाया, ठांड पाई।

कथ कथा है नरारी, तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना पारी। उस सहज अवस्था नूं प्राप्त करने वास्ते गुरमुख ने एक मंजिल तय करनी, किस रस्ते ते तुरना है। गुरमुख दा अपना एक रस्ता है, उस रस्ते दियां पैड़ां गुरु नानक ने छड़ियां ने। तुसां वेखिया है कच्चे राहां ते एक बंदा लंघ जाए ना, उहदे पैरां दे निशान पैंदे। दूजा वह बंदा जिसने वह पासा कदे ना वेख्या होवे, इधर उधर झाकदा, जिधर पैरां दे निशान नजर आउण उधर तुर पैंदा। पैरां दे निशान डबल हो जाण, दोहरे हो जाणगे। तीजे बंदे नूं इउं जापेगा जिवें इथों कोई एक नहीं कई जने लंघे। तीन बंदे चार बंदे लंघणगे, पगडंडी बन जाए। जिसले तीन चार दे मगर लंघदियां लंघदियां उस पगडंडी ते लंघदियां लंघदियां सैकड़े बंदे लंघणगे ते राह बन जाएगा। जिसले हजारां लंघणगे ते शाहराह सड़क बन जाएगी। धन गुरु नानक ने तुहाडे वास्ते एक शाहराह दा मुढ़ बने, गुरमुख दे मार्ग दा मुढ़ बने। उस मार्ग ते गुरु नानक साहब भाई मरदाने नूं नाल लैके तुरदे ने पै, ते गुरु नानक साहब दे मगर, भाई मरदाने दे मगर मगर किते राय बुलार तुरिया जांदा नजर आउंदा, किते महाराज शिवनाभ तुरे जांदे नजर आउंदे, किते भाई भगीरथ तुरिया जांदा नजर आउंदा, किते भाई बूढ़ा जी जांदे नजर आउंदे। इन्हां सारिआं ने मिल के गुरु नानक दे मगर तुर तुर के इस पगडंडी नूं शाहराह दा रूप दित्ता। साडे वास्ते बणी बणाई सड़क है, गुरमत गाडी राह है। इस गाडी राह ते तुरन वालिआं ने एक मंजिल ते पहुंचना है। जिहड़ा बंदा उस मंजिल ते पहुंचण दी तीव्रता लैके नहीं तुरदा, हौली चाले तुरदा है या तुरदा ही नहीं, उस बंदे नूं सोचना चाहिए। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने बड़ी प्यारी गल कही, वो कहिंदे ने